तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाए एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मूंह भी वेखना पिया महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू लालू नाल पा के देख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में और जिस वेले साडे हथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं यह हथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना यह हथ बज गए यह हथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हथ बन के सत्कार हुंदा ना किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे आदर करना होवे ता भी हथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हां अर्ज कर रहा हां मैं केवल अरदास जुड़िया होवां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराए बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ये वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहा तो ये वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु का होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया वाहिगुरू का कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुकर करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
कार्ज आया रासे नानक कहो गुर पूरा भेटियो सगले दुख बिनासे। जदो सतगुरु कार्ज करना आ जावे उसले कार्जा च सोभा हुंदी ते अरदास करन वाले दा मुख उजला हुंदा। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ

हों बेमुख मंदा चोर यार जुआर हों पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खो ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत

सत्संगलोना आवई जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में साध संग सतगुर सेवा ना लगावई जैसो मन किरत बिरत में मगन हो साध संग कीर्तन में ना ठहरावई

गुरु अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वरकर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।

शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुर देह हमारे ऊत ए है प्राण तोहे प्राण जब लग घट थारे निज नारी के संग नेहो।

एका नारी जति है, एका नारी जति है, पर नारी ती पहन वखाने, वेख पराइयां चंगियां, मामां पैना तियां जाने। ये है गुरशी। पहला नियम निम्रता धारण करनी, सेवा सिमरन परपकार करदियां होया भी किसे गल दा मन विच हंकार ना आवे। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना, साहिब कलगीधर पातशाह दा वचन आपने श्रवण कीता है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हन, कहिंदे हन जदों मेरे गुरुदेव पिता तिलक और जंजू दे राखे लई हिंद दा धर्म बचाउण लई अपना बलिदान देण वास्ते दिल्ली जाण लगे, तां मेरे पासों एक वचन लिया, शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुरुदेह हमारे, पूत ए है प्रण तोहे। आख्या मेरे बच्चे एक मैनू प्रण दे, ते ओ प्राण तेरा प्राणा दे नाल निभ जावे, श्वासा दे नाल निभ जावे। ए प्राण कलगीधर पातशाह ने फिर गुरसिखा को लिया कि मेरा सिख कौन है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है। गुरुदेव पिता कहिंदे हन के पूत ए है प्रण तोहे, प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ियो, पर नारी की सेज भूल छुपने होना जी। अपने जीवन नू पवित्र रखना ए गुरसिखी दा दूसरा नियम है। आओ अगले नियम श्रवण करो प्यार दे नाल।

जो था नियम गुरु का सिख ना किसे दी निंदा करदा है ना सुनदा है। किसे दी निंदा करनी इस तरह है कि उदे अवगुणा दा पार अपने सिर ते लै लां। भाव किसे ने कूड़े दी टोकरी चकी होवे ते खाम खा उदे सिर तो चुक के अपने सिर ते रख लै। ऐसा है किसे दी निंदा करनी जां किसे दी निंदा सुननी। तो हजूर पानी विच बख्शिश करते हैं कि निंदा पली किसे की नहीं, पर कौन करदे हैं मन मुख मुगद कर मुंह काले तिन निंदका नरके कोर पम। इसलिए गुरु का सिख गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बारों फोला। गुरु का सिख बारों फोला है अंदरों सियाणा है। किस लई किसे नू नुकसान पहुंचान लई नहीं। अंदरों सियाणा इसलिए है भई जिथे ता गुरु की बाणी दी विचार हो रही है कन दे के सुनदा है मन दे के सुनदा है। ते जदों निंदिया चुगली शुरू हो जांदी है कहिंदा मैं कुछ सुनाई नहीं देंदा मैं चलदा हां। सतसंगत बोलो श्री वाहिगुरु। एक गुरसिखी का चौथा नियम पहला

अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत शील संतोख सदा निर्बाहे वो होए गोत्रे गुण अतीत थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुर सिख जोगी जाग दे गुर सिख जोगी जाग दे माया अंदर करण उदासी

नवी म्यूजिक मेमोरी इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेंट कीती है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी दे मेंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

जिंदगी दियां तमाम गरजां दे कारण, लोड़ां दे कारण एक दूसरे तो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन। उन्हां दी बिना उते कदे सानू जो है खुशी नसीब हुंदी है, कदे गमी मिलती है, कदे सानू खिड़ाओ मिलता है, कदे सानू डिसअपॉइंटमेंट्स जो वो मिलती है। सो अजिहे एक्सपीरियंस ते हर इंसान अपनी जिंदगी दे विच रोजाना जो है एक्सपीरियंस करते हैं। दे आर मोर लैस इक्वल एंड सेम रेपिटिशन। लेकिन इस शब्द दे विच भगत कबीर जी ने जो मनुखी जिंदगी दे विच कीते हुए एक खास अनुभव दा आत्मक अवस्था दे किसे खास एक ऐसे एक्सपीरियंस दा जो एक्सप्रेशन जो साडे सामने पेश कीता है इस शब्द दे विच, वो बहुत ही रेयर है, वो बहुत ही कम है। अते विरलियां नूं अजिहा थ्रिलिंग, अजिहा जॉयफुल, अजिहा अनुभव जो है वो हासिल होता है इस शब्द दे विच। कबीर जी एक दृष्टांत साडे सामने रखते हैं। पहला मैं वो दृष्टांत तुहाडे सामने रखा ताकि उस गल नूं मैं जो एलैबोरेट करना चाहना हाँ वो मैं कर सकां। शब्द आप फिर प्यार नाल सुनो। कहते हैं पंथ निहारे कामनी, कामनी कहते हैं एक स्त्री ने, पंथ निहारे कामनी लोचन भरी ले उसासा उरना पिजे पग ना खिसे हर दर्शन की आशा। एक मेटाफर है, एक दृष्टांत है, एक उन्होंने मिसाल दिती है साडे सामने। जिस तरह कहते हैं एक पत्नी जिसका पति प्रदेश दे विच चले गया होवे बहुत लंबे समय दे वास्ते, अते उसकी जदों वो जुदाईगी महसूस करती है, उस जुदाईगी दे विच की करती है, पंथ निहारे उसका रस्ता देखती है, उसकी राह तकदी, उसका इंतजार करती है। पंथ निहारे, निहारे का मतलब देखती है, पंथ निहारे कामनी वो औरत लोचन भरी, कई दफा उस विछोड़े दी जो दर्द है उस करके उस दे लोचन भरी, उस दी अखां जो हैं लोचन हैं वो भी पानी दे नाल भर जांदियां, अंसुआं दे नाल भर जांदियां। ले उसासा अते अपने अंदर ही अंदर उस जो खला है जिंदगी, जो कमी है उस दे कारण ले उसासा वो हौके भी लेंदी है। अगे चलते हैं। उर ना पिजे, उस दे हिरदे नूं उस दे दिल नूं टिकाओ नहीं आंदा। पता नहीं केड़े युग दियां ये गल्लां भगत कबीर जी ने साडे सामने पेश कीतियां हन। एक दृष्टांत है, अज भी जिंदगी च पत्नियां ऐसा महसूस करदियां हन जां नहीं ये मैनू नहीं पता, लेकिन भगत कबीर जी ने यह दृष्टांत ये प्रमाण साडे सामने किसी युग का बख्शिया है। कहिंदे हन उर ना भिजे, उसका हिरदा जो है वह खलोंदा नहीं है। और कहते हैं हिरदे में दिल नू, दिल नू उस दिन टिकाओ नहीं आता, तसल्ली नहीं आती, बेचैनी है, एक उथल पुथल है। और ना पिजे पग ना किसे अते उस दे पैर अगां चलते नहीं हैं, भाव कोई सत्या नहीं अंदर कुछ करन दी। और ना पिजे काश आज की दुनिया च अजिहा ही प्रेम होवे। लेकिन भगत जी ने किसे खास ही वक्त दे विच जदों अजिहे रिलेशन हुंदे सन उदों दी ये मिसाल दित्ती है। और ना पिजे पग ना खिसे पैर अगां चलते नहीं हन अते की है हर दर्शन की आसा। इत्थे जाके उन्होंने गल कही है हर दर्शन की आसा। जेड़ा भगत हुंदा है, जेड़ा दास हुंदा है, जेड़ा गुरु का सेवक हुंदा है, उस दी अंदरली जो अवस्था ए हुंदी है। जिस तरह उस कामनी दा जो पति प्रदेश दे विच गया है उस दे राह तकदी है, अखियां दे विच हंझू आंदे हन, अंदर होके लेंदी है, दिल किते खलोंदा नहीं है, कदम अगां चलदे नहीं हन। जिस तरह दी कहिंदे उस औरत दी जो मानसिक अवस्था हुंदी है जो गुरु दा दास है,
जो गुरु का भगत है जो भक्ति अते बंदगी दे मार्ग उत्ते चलता है कहते हैं उस दे अंदर अजिहा विरह जो है वह पैदा हो जाता है। उस दे अंदरली जो दशा अजिही वैराग्यमयी हो जाती है। उस दा अंदर जो है अजिही एक लौंगिंग दे नाल भर जाता है। और न पिजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा। तो मैं पहला ही अर्ज की सी कि अज दे इस कीर्तन दे विच मैं आप जी दे सामने एक खास किस्म दी मनुखी जीवन दे विच जो अनुभव कीती हुई अवस्था दा जिक्र करना है। असी ये देखना है कि साडी जिंदगी भी की अजिहे अनुभव दे नाल अमीर है या नहीं। डू वी फील दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसिस इन लाइफ और नॉट। साडे जीवन दे विच भी अजिहे प्रेम दे नाल भरे हुए हिरदिया वाले अनुभव वैरागमयी अनुभव हन या नहीं है। अते अगली पंक्ति जो असी अस्थाई दी गाई है मैं फिर तुहाडे सामने गाणी चाहना हाँ। कहिंदे हन उड़हो न टागा कारे। आप सारे जानते हो असी पंजाब चो आए हैं। साडे देश दे विच एक जदों किसे खास अपने मिलन वाले दी पुत्र दी पिता दी माता दी पत्नी दी पति दी भरा दी भैन दी जां रिश्तेदारां दी जिस दे नाल बहुत ही ज्यादा स्नेह होवे उस दी जदों इंतजार हुंदी सी ते साडे ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਵਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ।

अगर आप सारे मैं पिछले कीर्तन च भी किया है इसनु सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन्हां शब्दां दे नाल अपनी आत्मक अवस्था नूं उच्चा करन दी कोशिश करिए। इन्हां शब्दां तों असीं अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी दे सामने अज दे इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हां, जिस शीशे दे विच असीं अपने आप नूं देख सकीए। मैं आप जी दे सामने साडे सतगुरुआं दी जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड ओह रख रहा हां, ताकि सानू कुछ ना कुछ से चोट लगे कि असी किहो जहे हां, अते जिन्हां दे असी अपने आप नूं होण दा दावा दिंदे हां उन्हां दे हिरदे किहो जहे हां। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है, हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हां, अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उससे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वो हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उसके अंदर हौके होंगे हैं, तो उसके अंदर की इंतजार होंगी है उडीनी यानी उड़ीक उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री कदों वो प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है। अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने ये भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन चराई अपने लहां सो सज्जन तोल। कहिंदे इंतजार तमन्ना इतनी बढ़ गई है कि अगर किते मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सकां तो कहिंदे मैं ये भी करन नू तैयार हां। खंभ भी कंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन तोल। तो हुण तक मैं जितनियां भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच ये पेश किया है, ये आप जी के सामने रखिया है कि गुरु साहब एक खास किस्म की अवस्था एक खास किस्म का ह्यूमन लाइफ के विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही भागशील लोगों ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उसनू साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जा आप जी के सामने मैं रखना चाहना हाँ जिस दे विचों सानू गुरु

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते हैं सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं है कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर ये कहते हैं कि बिखन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनों असी थोड़ा जा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनों असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी च जदों उदास लफ्ज आता है तो इसके जो भाव हैं इसके अर्थ हैं वो टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नूं किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनों असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे सानू ना मिले तो फिर की होंदा है, साडे अंदर एक तोटा एक काज एक थोड़ महसूस होंदी है। अते जिस चीज दे वास्ते साडी रुचि होवे अगर वो सानू मिल जाए तो सानू एक खिड़ाव महसूस होंदा है, एक ताजगी मिलती है। गुरु साहब उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार हुंदा है, उस दी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उस दी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़ने वालों की संगत गुरबाणी दे विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू ये नहीं मिलता तो उस दे जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरांत आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन चीजों के ही उलझे रहते हो, फसे रहते हो, खोए रहते हो, तुसी इना दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंगे। भाव के तुसी कदे आखते ही नहीं हो, कदे रचते ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन चीजों के विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते हैं निमख भरते वास्ते भी पल भरते वास्ते भी तुम इन्हों छना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्हों जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साड़ी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साड़ी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध विख भूख प्यासा आ साडे पले, काम क्रोध विख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हां दे चित उदास हैं, पाप जिन्हां दे चित इन्हां तमाम दुनिया के झमेलियां तो उच्चे उठ के कुछ होर लभदे हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन दे विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का भाव जदों इन्हां चीज़ां च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लभदा होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनन च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था जिही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे

मैं सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों कोई सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो काश, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि ऐ इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लभदा, तेरा चित कदे अजिही चीज नहीं लभदा जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लभदा रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाणा है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानूं सुनेहा मिल रहा है, जो सानूं उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान दे पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नूं कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया के खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी यह सुनदिया सुनदिया अंदर यह देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असी अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो। कहिंदे हन

जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे हौ तुमरी करो नित आस प्रभु मुए कब गल लावेंगे कदों वो दिन आएगा जदों तू मैनु अपने गले लावेंगा गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जांदा है ते जे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

ऐसा गुरसिख मिल जाए ओदे मिलिया पाप पुनिठ दा भाव है पापा दा भी नाश हो जांदा है। भाई साहब कहिंदे ने गुरसिख दा जीवन ऐसा होवे ते मैं उस तो सदके

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लै गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लै गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नु फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ नु भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार स्वीकृत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारी। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,